धन गुरु अर्जुन देव महाराज, दिन राती आराधा प्यारो, निमख ना कीजे ढीला। और ए भी गुजरी राग, और गुजरी राग भी तुम्हार है।

कर्मी सहज ना उपजे सहज सहसा न जाए कर्मी सहज ना उपजे बिन सहज सहसा न जाए न जाए सहसा किते संजम रहे कर्म कमाल सहसे जियो मलीन है कित संजम तोता जाए कित संजम तोता जाए मन तो शब्द लागो आसो रहो चितला कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजाई

जिसको हर तब मचितिया में तो संत सुहेला नहीं डोलावे, जिस पर अपना कृपा करे, जिस पर

निवास, खाल से मैं हूं करो निवास। खालसा मेरो मुख है अंगा, खालसे के हूं सद सद संगा, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। खालसा मेरो इष्ट सुहृद, खालसा मेरो इष्ट सुहृद, खालसा मेरो कैयत बिरद, खालसा मेरो पछ अरपाता, खालसा मेरो सुख एलादा।

जेवा एक पार ना लेही शेष रसन सारस सी बुद्ध तदप न उपमा बरनत सुध शेष रसन सारस सी बुद्ध तदप न उपमा बरनत सुध या मैं रंच न मिथ्या पाकी। मैं झूठ नहीं कह रहा, एक जरा पर भी एक छिन पर भी इहदे विच मैं झूठ नहीं कह रहा, सौंख आके कहना या मैं

हलत पलत दोइले हो सवार, राम नाम अंतर उर्धार, पूरे गुर की पूरी दिखिया, जिस मन बसे तिस साच परिख्या, मन तन नाम जपो लिवलाय।

0: टेक है क्या गुन तेरे सार संभाली, शुरुआत है मैं मूर्ख की केत की बात है, कोट अपराधी तरिया रे गुरु नानक जिन सुनिया पे किया
1: से फिर गर्वास ना पड़े।

कर दिया। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, तो बड़भागी पान, बड़भागी

नादनोत जस स्मरणेन जन्म जराद मरण भयं। जिसनु आराधन नाल तेरी पैदायश बुढ़ेपे अते मौत दा डर सब खत्म हो जाएगा। सो सतसंग जी असी प्रैक्टिस कीती बहुत, अखर थोड़े जे औखे है ते सारियां कोलो पहले ही माफी मंग लैंदे आ, पर ए भी आप जी कोलो आशा करदे आ कि आप जी सार ही साडा साथ निभाणा जी। सो आओ जी, राग गुजरी विच श्री जयदेव महाराज जी दा शब्द।

गुरुदेव बहादुर साहब कहते हैं, अपने आप को गुणी समझकर कीर्तन ना कर, मुझ में गुण है। हाँ, मुझे याद है एक बार मैं वैंकूवर बाहर गया तो एक रागी जत्था आया, वो थे रबाबी। अब वो रबाबी लोग जो होते हैं वो तो कहते हैं जब उनका बच्चा रोता है तो वो भी सुर में रोता है। भाई मर्दाने के खानदान से रबाबी लोग, लेकिन इतना गुण परमात्मा ने दिया, लेकिन अहंकार आ गया कि हम लोगों के सिवा और कोई गा ही नहीं सकता। सत्य बलवंडे ने भी अहंकार किया था, हम ना कीर्तन करें तो कोई गुरु नानक को पूछने वाला थोड़ी था। तो वो कहने लगे हमारा कीर्तन उनके बाद में था, तो वो कहने लगे कोई है माई का लाल जो हमारे जैसा कोई शब्द पढ़ सके, जैसा हमने राग गाया कोई गा सके। तो हम पीछे बैठे, मैंने कहा भाई ये कीर्तन है, ये कोई दंगल थोड़ा ही है। एक बार प्यार से बोली, ये दंगल नहीं है, यहां कुश्ती नहीं होती। यहां तो जैसे जैसे इंसान में गुण भरते हैं वैसा वैसा इंसान नीचा होता है, निम्रता में आता है। जो यहां भी गुण गाकर अहंकारी हो गए तो फिर निम्रता कहां आएगी, बाहर दंगल में आएगी। यहां तो निम्रता सीखनी है, जितना जितना सेवा की गुरु अंगद देव जी ने उतनी निम्रता में भरते गए। जैसे जैसे गुरसिखों ने गीत गाए वैसे वैसे निम्रता आती थी, नीचे होते चले गए।